अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मनपसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को। उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो तो, क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जाते, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही। और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि आज जितनी भी कहानी अपन और अन्य स्त्री में सुनी हैंगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोई जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बियोरे देखिया थी, तो लड़की को देखने की कोनों जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी। तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज

0: ही कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करेंगे, हम आपको सीधो ले चलाएंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चलाएंगे राधापुर।
1: अपना लेडी

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। कहाँ करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहा
0: हूँ। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ 20 साल से।
0: अच्छा तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
1: हम मायको झांसी में।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में होगा गोविंद चौराहे ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना होगा?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा उन्हीं
1: हाँ,
0: के नीचे हाँ, रहते थे। आपके परिवार में खूब हो तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, दोनों थे, तीन बहन थे।
0: अच्छा तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा आपके घर पे क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सबके थे। ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम कर आते। हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, मैं अम्मा के लिए का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटे।
0: अच्छा 10 रुपया?
1: हाँ 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती हुई और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए 10 रुपए दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहती
1: है।
0: अच्छा अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो अपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करी, लेकिन उसमें और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी हुआ, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ तो वही खेल में की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये यही खेल खेलते तो होते हैं।
0: कंची
1: चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा
1: सावन को चपेटा कलर।
0: अच्छा
1: जो खेल रहा है।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? खेलत में गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा गीत ही नहीं आते? पहले तो गाती हूँ आप।
1: अरे भूल गया तो बड़ा आपको ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बड़ा को नहीं है आपको, लेकिन तो बड़ा को नहीं लगा था
1: आपको।
0: तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: कौन नहीं गाते हैं
0: आप? गाते हैं। अच्छा आपकी सहेली कौन बनाती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली हमको जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो कल को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली नहीं सकते।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ मिल जाते,
0: मिल जाते इकट्ठी हो जाते
1: हैं। कभी कभी इकट्ठे हो जाता खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहनों में लगते हो, अच्छा लगता
0: है। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती, मतलब पहनत का कपड़ा कौन कौन सी चलती?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती से चड्डी कपड़ा की सिलाते पहनते और फिर आते पहनते और खड़ा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते हैं, ये पहन लेते और हम तुम तो खड़ा कर दे रहे तो ये पहन लेंगे और ये कह रहा हूँ।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन के तेज उम्र में हमारी भाई आती।
0: तो मतलब कुछ तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी।
0: बिल्कुल नहीं जानती? अच्छा जैसे आपकी शादी हो रही थी उसको आपने देखा तो
1: है?
0: पहले से देखा तो
1: है? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा
1: तो से कहते हमारे बाप बताई 8-9 साल के साथ 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो जिनमें उनको काम करते हमारी मताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 से
0: सही बात।
1: उन लोगों ने सब 100 रुपया देने में डाई थी।
0: अच्छा
1: तो वही मताई ने उठे कई मतलब
0: 500 रुपया
1: नहीं सबसे जैसे।

0: कुछ लोगों ने ऐसे पुण्य आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे वैसे ही बिट गया को पुण्य दिया और पुण्य में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग
1: जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई
0: है
1: राधापुर ससुराल है आपकी तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगे जैसे पहले दिना तेल मंडप
0: पहले मंडप तेल लगाओ फिर मंडप बो तो टीका
1: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह
0: हो तो तीन दिन को होता
1: तो बरात तीन दिन मिली रही थी
0: एक तीन दिन मिली रही थी बरात नहीं टीका छोड़ी जाती जरा दूसरे दिन जाती हम जयमाला नहीं करी मैंने तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को तो पट्टा
1: अच्छा
0: और जब तुम जो लाल बापो बलाइस
1: अच्छा
0: जो सब पहला तो मतलब जयमाला नहीं मिलती फिर कैसे हो गया मड़वा की तरह सीधा हो ऐसे मड़वा जयमाला लड़का मड़वा गाला ना
1: चावल अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ पता होगा
0: नहीं बता हूँ नहीं
1: बता अच्छा चावल को कुछ पता ही नहीं
0: है मड़वा के लिए और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने
1: चावल के बाद
0: बस फिर बाहर चलो गए लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत गई फिर चढ़ा चढ़ो फिर
1: भावरे कहाँ चढ़ा तो आप
0: हमें पेज में चढ़ी थी एक किलो के वो खम बज्जा
1: एक किलो की पेज
0: ना हाँ एक किलो के पेज ना खम बज्जा
1: बस दो
0: और जही के पैर अब तो पैर नहीं
1: बाजू बंद
0: हाँ दो चढ़े थे
1: अच्छा
0: तो अभी रखे हो
1: आप
0: हाँ बात अच्छा छह लड़का छह लड़का के ब्याह कर ले
1: अच्छा
0: कौन से
1: सही बात है अच्छा आपकी विदा का है भाई दी
0: हमारी डोल में डोल जब डोली में वही में वही थी
1: बेटा
0: वो तो ऐसे तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी
0: में बैठ जाते लेकिन बेटा हो के हमारी गाड़ी गई से आई थी
1: अच्छा बैलगाड़ी
0: से बैलगाड़ी से होती पहले बेटा सवाई की होती हम अच्छी का पहले जो इतने बहन कहाँ थे और चाटक नहीं जाते खेला तक नहीं जाते अब तो कदम नहीं मिल रहा आदमी
1: अब तो अगर भी जाना
0: है अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी से जाना
1: है
0: जाना है
1: सही बात है तो फिर जब आप विदा होके इतने आए थे ससुराल में कुकु मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी
1: अच्छा आपके अम्मी नंबर की है
0: दूसरे नंबर के नानी बोलो
1: नंदन की शादी हुई
0: है
1: अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हती
1: बड़ी अच्छा तो फिर आपके एक एक का रस में भाई मतलब
0: कंकन छूटे हाथे लगे दो तीन चार दिन रहते फिर चले गए थे
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
0: खिचड़ी बनाई थी
1: आपने खुद बनाई थी
0: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी में बना दी थी
1: अच्छा
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा तो आप
0: दोबारे में ओलेंडर लगा दे
1: अच्छा ओलेंडर लगा दे जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई उन सबने खाई तो फिर का करने मिलो तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिले तो हमें तो पैसा रखना पड़े तो फिर लेना
1: वो देने
0: हाँ
1: ये सब उल्टा नहीं हो रहा
0: पहले देता ही है तेल अबे भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवा चूल्हे में रखवा बहू से सास लेते हुए पैसा चाहे दस दर है चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ
1: दे
0: लेकिन वो सास ले और तो रखत बहू तो बेबी सास ले
1: अच्छा
0: जी का सास ना हो तो जेठानी में
1: तो जैसे पहले एक अरे एक रसम होते जुड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुल
0: नहीं हमारे समय में नहीं
1: जुड़ा नहीं खुला नहीं अच्छा आपकी
0: छोड़ा खोल लगते जो
1: छोड़ा खोल
0: जो छोड़ा
1: हाँ तो ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है
1: खोल सा खाती के
0: खोल सा खाती सास
1: का महत्व हो तो मतलब
0: जब सास दे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो ये कछु महत्व
0: कछु महत्व हो जी नहीं
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: छोटे आते से कछु दे
1: समझ नहीं आती होते फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आई अपने ससुराल में फिर कैसे काम करती जेठानी के संग मिल के
0: जेठानी के संग करती लड़ाई का
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी से ना सास से भाई कभी
1: नहीं होती आप सीधी हती
0: क्या दो जने भी एक से आते

0: मिलके कर लेते हो बस सबने फिर सियान होगा तो सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और सासरी में का काम होते
0: आपके? खेती खेती होता ही रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: फिर मोटर कहाँ होती? रात ऐसे खेती होती तो रात चलात रखते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठाती हैं आप?
0: 4 बजे उठ जाते
1: हैं।
0: 4 बजे से पी सकते सो 5-6 किलो नाच पीस लेते।
1: 5 किलो रोज पीसने?
0: हाँ रोज। इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप? जैसे सुबह से उठ के पी सकती हो?
0: 4 बजे से भी पी सकती।
1: संग पी सकती
0: हूँ कहूँ संग कहूँ अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद का काम? गोबर
0: गोबर डालते।
1: कितनी गाय भैंसें
0: होती आप? 10-12 गाय होती।
1: अच्छा
0: गोबर मोबर डालते झाड़ा झूली करते
1: फिर
0: एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
0: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते सो गांठ चलाते दिन भर।
1: अच्छा वहाँ से बहाने आते
0: नहीं बैलन से
1: चलते
0: घर में नहीं आती
1: लोग
0: सो वही चलाते रहते कब हम सात गठा नहीं चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपने कहो
0: भी।
1: अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
0: हमारा 6 लड़का।
1: 6 लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है।
1: लड़की नहीं है को तो अपने लड़कों को तो पढ़ाओ जो
0: पढ़ाओ परेशानी होती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हुई?
0: हाँ सबकी हो गई सब नाती में तो लड़की हो गई।
1: अच्छा नाती इनकी भी हुई? कितनी नाती है ये?
0: 6 नाती है 6 नातने हैं।
1: अच्छा तो
0: बिलाती को
1: मतलब
0: बिलात
1: बड़ा परिवार है?
0: हाँ तो 6 लड़का है तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा
0: और 1 के 4 है बड़े के 3 मोड़ी है
1: तो एक मोड़ी
0: तो आप भी रोगर हो गई
1: तीन
0: मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा 1 के छोटी 1 के मोड़ा होगा 1 के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
1: तो बहुत बड़ा परिवार है। आपको अच्छा लगा थी त्योहार पे हुआ सब जगह आ रहा था तो अच्छा लगा थी है ना। तो आप सुनाटा नहीं खेलती हो? कैसे खेलती आप अपने
0: सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक बस पर खेल
1: गाना गाते भूल नहीं आते याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही
0: हैं
1: आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसे लग गई थी मतलब?
0: पहले इन्होंने 4 जन्म के कागज दिए थे घर के तो सब ने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा
0: तो सब जनों ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करना सुखर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सका।
1: हाँ,
0: बिल्कुल 350 में लगते हमें 200 रुपया
1: धीरे धीरे करेंगे।
0: फिर हम इनके ससुर बोले लगा हम दे जरूर करें तो मैं 2-4 रुपये ली नाच खावे के गाँव में बज का कर इनके ससुर दे देते 2-4 रुपये ली नाच हम पानी भरे आते इनको तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी भी अब छोड़ दो हमने बना तो नहीं लगे। जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भर उनको बोला खाए भी देखी परेशानी से जैसा नहीं तो जो जैसे सकते खाओ नहीं करते तो कोई
1: सही बात है
0: तो कोई ना करो।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला
0: गिला
1: मिल जाता?
0: 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500
1: होगा
0: 350 है हमारे फिर 1500
1: धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी और जा आंगनबाड़ी कर ली पर
1: आपको का लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
0: चौपे में तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है जीवन के
0: लिए जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ।
1: सही बात है लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
0: है लेकिन पहले हाँ
1: पहले नहीं मिला थी लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम पढ़ाए चाहिए है ना। बिल्कुल तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए
0: अपनी सब 8-8 पढ़ी ना तो नाती पढ़े
1: पढ़ाना चाहिए
0: सब पढ़ा रहे।

0: को हुआ बड़ी बड़ी हो गई सब सात सात आठ आठ में करके छोड़ता गया पर्दा नौ तो धन की
1: बहुत बढ़िया आप
0: दोनों को पर्दा अब दो नौती पढ़ रहा है।
1: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में बताओ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.42 दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन हो रहे सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई है कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, क्या कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका बासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी, ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़तो। तो देखो आप अपनो समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गांव में या आपके आसपास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चलत चलत सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है? प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा। इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसे मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं।

0: हैं उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का, तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं। तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
1: बिल्कुल। तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
0: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
1: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
0: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो नेगेटिंग इम्पोर्ट रिलायंस।
1: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
0: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फूडिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डिंग कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी

0: ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बार तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होते हैं उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं। तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितने दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है, क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्रीवेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बेयर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई से भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्रीवेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सबका एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उसमें

0: हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं?
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पॉल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है। जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहैजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और उसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे भी अलाइंड है। 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड है, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल से अलाइंड है। लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रहे हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे? कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसीलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जब जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहे तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करे और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सके जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पर है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे?

0: और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
1: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट मिले हैं वो काफी प्रोमिसिंग रिजल्ट मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज

0: पूरा करेंगे एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल. हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी.
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं. तो भारत सरकार की जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में. तो उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है. ये बहुत कम ही होगा कि ये किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए. तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते वो इवन ग्रांट्स देती है. अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है. तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं. हमें काफी सहायता आर्थिक सहायता मिली है उससे. इवन हम जो इंक्यूबेटेड है अभी IIT कानपुर में उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है. ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है. उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर रिलाई करता है और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे. लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमें करवाए हैं वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा. तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है लेकिन आगे चल के भी क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर ले पहला MVP बना ले तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले. तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं.
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए जैसे कि मैंने बताया ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है. फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए. तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं या फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट वी आर अपसाइक्लिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है. मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें 7 से 10 रुपए किलो के बीच में. अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ये लाखों में जाएगा जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट. तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं. तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है. तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे.
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही है?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो. तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में. और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे. हमारा USP यही है और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है अब बस हमें जग जीतने की देरी है.
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है इतना आसान नहीं होता. तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर आप में थोड़ी भी लगन है कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी उसकी मदद होगी लोगों की सहायता होगी तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता. आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले।

0: करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस है उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम और छतकेला के पास ओरछा। फोन नंबर है हमारा 9219207749। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

अपनी अपनी आग में।

हाँ देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान

बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए। परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढें जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है। ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों, इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से। और दोस्तों, इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जहाँ अपन सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन ये स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही हो कि माता दीन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कि सावन करो जात ससारे चैन जिजा में नैया, ओ नैनन धार लगी असुगन की रो।

कथत घोड़ा पदन समारे बैठक घोड़ा पदन संहारे कलिया सबरी पंख पसारे कलिया सबरी पंख पसारे ले तन दस मु

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। नमस्ते।
1: जी, योगेश भैया नमस्कार,
0: बढ़िया
1: कैसे हैं आप?
0: है, अच्छे हैं।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
0: रक्षाबंधन का कोई गीत सुनना है। हाँ
1: रक्षाबंधन का? चलो और का हो?
0: बाकी सब ठीक है जी।
1: हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। और सब मजेदार ही है?
0: क्या बोले भैया?
1: और सब बढ़िया है?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब
1: हाँ
0: ठीक है।
1: कल्याण
0: अभी
1: बिरंदे
0: ऑफलाइन में है क्या भैया?
1: जी।
0: अच्छा,
1: हाँ चलो ठीक है योगेश जी, अपन गीत की ओर चलें।
0: जी, धन्यवाद
1: चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन लगाने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो। राम
0: राम राम भैया।
1: राम जी। राम राम। कहाँ से?
0: मैं राजू यादव ग्राम का श्रीरामपुर डेरा।

0: अच्छा लाट मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: जी कैसे हैं राजू भैया?
0: भैया चारों तरफ पानी भरे हुए, नदिया पुल के ऊपर इस समय चल रही
1: है। क्या बात है, लबालब है काम।
0: आवाज है नदिया में छुआ छू खेल खेलने को।
1: सही कह रहे
0: राजन मेरा।
1: क्या बात है,
0: उम्र है मिलने को आ बुंदेलखंड ओरछा में दिल बेकरार आ रहे।
1: चलो बहुत अच्छी बात है।
0: कार्यक्रम बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बारिश तो अब लगातार 2-3 दिन हो रही है, अब तो थोड़ा कम हो जाएगा।
1: आज तो खूब पानी बरस रहा, पूरे दिन सुबह से लगा पानी है, रात में भी बरस रहा।
0: 2 दिन से हो गए भैया, हमें आगे तो पानी बरसा 2 दिन।
1: अरे हरे।
0: और पुल के ऊपर तो पानी नहीं है, लेकिन पुल में भी पानी आ जाएगा।
1: चलो ठीक है, बढ़िया है।
0: हाँ भैया सुनवा दो गाना, तो बढ़िया आनंद आ
1: जाएगा। चलो तो गीत के और चलते हैं अपन।
0: राम राम भैया।
1: राम राम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते नमस्ते भैया। कहाँ से?
0: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता है भाई सतीश रघुवंशी।
1: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
0: बस गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। और मनीष सर जी आपको सतीश रघुवंशी से बात करने से पहले सबसे पहले मेरी ओर से नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया?
0: बस बढ़िया है, बहुत दिन से बात नहीं हुई थी आपसे।
1: जी, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
0: ये सुनेंगे आज, फूल मैं भेजू दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं। फिल्म का नाम सलमा पे दिल आया।
1: अच्छा, चलो बढ़िया है। तो गीत की ओर चले हो?
0: बिल्कुल सर जी, और कुछ दोस्तों को याद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
0: सबसे पहले तो आपको
1: जी
0: और हमारे पर्दे के पीछे हमारी वर्षा दीदी बैठी हैं, वो कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं इस समय, उनको भी डेडिकेट रहेगा।
1: जी
0: और हमारे मित्र हैं गुणवंत गढ़ू जी हैं, सर लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, राजन गंगवार जी हैं, राजू
1: जी
0: यादव जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी, और सुनने वाले सर सभी को डेडिकेट रहेगा। थैंक
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यू सर।
1: चलो गीत की ओर चलते हैं अब।
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो बुंदेलखंड जी।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो बुंदेलखंड से।
1: सर जी, प्यार अते सत्कार भरी सत श्री अकाल बुलाता हूँ जी, पंजाब से बोलता हूँ जी।
0: जी, अपना नाम और बता दीजिए।
1: हाँ जी सर जी, मैं जी पिंड माहौलकोट जिला बठिंडा पंजाब तो दिग्जी समर्थ तो बोल रहा सर जी। ठीक
0: जी, कैसे हैं आप?
1: है सर जी, तुसी दसो जी, छोटी सेहत ठीक है जी, घर परिवार जी
0: जी,
1: ठीक है जी।
0: आज गीत कौन सा सुनाएंगे अपन?
1: सर जी पहले मौसम की जानकारी दे दीजिए, बारिश सुहाड़े हैगी बुंदेलखंड का है नहीं जी?
0: बिल्कुल, बरसात है तो खूब हो रही।
1: अच्छा अपने पंजाब जी का है नहीं जी, सुक्का ही लागा सावर जी। हाँ
0: जी
1: जी साहब जी, पुरानी फिल्म है जी के शोर,
0: जी
1: उसमें बोल बोल गया एक बताऊं जी। पानी
0: बिल्कुल,
1: रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उससे
0: क्या
1: जैसा।
0: क्या क्या बात कही,
1: सर
0: हाँ
1: जी तो अंदर गलबात करके अभी खूब मस्ती जा जाते हैं जी।
0: सही कह रहे हैं आप।
1: चलो ठीक है सर जी, सत
0: ठीक है ठीक है, नमस्कार।
1: श्री अकाल सर जी, बाबा गाल से जानती बात रखी जाए मेरे, सत श्री अकाल जी,
0: जी, सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।

0: हेलो मदन भैया, सब नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोल्डन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मदन भैया, आप कैसे हैं?
1: जी बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
0: आपकी थोड़ी सी आवाज कम मिल रही है रेडियो पर, आप बढ़ा दीजिए थोड़ा
1: अच्छा,
0: सा।
1: हमारी आवाज कम आ रही?
0: जी, श्रोताओं की अच्छी आ रही है, आपकी थोड़ी कम आ रही है।
1: चलो ठीक है, बढ़ा दी। देखो पड़ो फर्क कछु?
0: हाँ, अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा।
1: हाँ, चलो ठीक है। तो शारदा भैया कहाँ हो रहा अपनो?
0: बस बुंदेलखंड ओरछा में फोन लगा रहा था, कई बार घंटियां गई लेकिन कॉल उठा नहीं, तो
1: हाँ,
0: मुझे
1: क्या
0: मुझे लगा कि आज माता रानी भैया कुछ नाराज हैं क्या, हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। प्रयास करते करते करते अभी तो माता रानी भैया प्रसन्न हो गए, तो उठा ली कॉल हमारी, आपसे वार्तालाप हो जा रही, बहुत ही खुशी हो रही है।
1: जी। तो आज गीत कौन सा सुने अपन?
0: अब श्रावण का महीना है, रक्षाबंधन बिल्कुल नजदीक है, और हमारे बुंदेलखंड ओरछा का ये इस सप्ताह का तो आखिरी एपिसोड है।
1: जी
0: ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार पर आपको, बुंदेलखंड ओरछा परिवार को, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
1: बिल्कुल, आपको भी।
0: और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अंधा कानून,
1: जी
0: मेरी बहना बड़ी दीवानी है, ये
1: अच्छा
0: गीत रक्षाबंधन के अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बुंदेलखंड ओरछा से। हमारे राजू
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भैया हैं जो अभी अभी बुंदेलखंड से जुड़े हुए थे, और योगेश जांगड़े भी जुड़ चुके हैं, पहली कॉल उनकी थी। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं लोकेन वर्मा हैं, और राजू लवानिया जी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह और भजन लाल जी, इन सभी दोस्तों के साथ में हमारा जो ब्रज रेडियो श्रोता मित्र परिवार है, उन सभी को ये गीत समर्पित करता हूँ।
1: जी
0: और हमारे माता दीन भैया जी हैं, मनीष भैया और वर्षा दीदी, साथ में बुंदेलखंड ओरछा को सुन रहे सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी नमस्कार भैया जी।
0: धन्यवाद, नमस्कार, आप दिन मंगलमय हो।

0: हेलो।
1: बात करो तो
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो
1: तू
0: हेलो।
1: बात करो
0: हेलो। हेलो हेलो। हेलो।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी भैया, कहाँ से?
1: महाराष्ट्र हिंगोली जिला कळमनुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर।
0: जी मोहन भैया, कैसे हैं?
1: बहुत बहुत बढ़िया है सर जी, गाने सुन रहे हैं। क्या चल रहा नहीं सर? हुए
0: जी
1: ये चल रहा नहीं क्या? कंप्यूटर आवाज जरा बहुत कम आ रहा बोलो। रेंज?
0: अच्छा, कम आ रही आवाज आपके इतने तक?
1: हाँ जी, आवाज बहुत कम आ रही है, चल रहा नहीं क्या? मैं बोला क्या टावर का फॉल्ट है।
0: हाँ, हो सकता है।
1: बोला बोला सर जी।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
1: मोहम्मद रफी की आवाज है, अमिताभ बच्चन पे चित्र गीत हुआ है
0: जी
1: और गीत है मेरे दोस्त के साथ ये क्या हुआ है,
0: अच्छा,
1: सुना है कि तू बेवफा हुआ है। हाँ
0: हाँ
1: जी, ये गीत सुनना है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: थोड़ी आवाज बहुत ही कम आ रही है सर जी, क्या फॉल्ट है जरा देखो जरा, क्या पता नहीं लग रहा इधर तो, क्या है रेंज का फॉल्ट है कि क्या है कि, लेकिन आवाज कुछ सुनाई नहीं आ रही उतनी इधर महाराष्ट्र में। हाँ
0: अच्छा,
1: जी हाँ, जरा कुछ समझ में आ रहा नहीं, क्यों कोई बात कर रहा वो तो समझ में नहीं जा रहा, लेकिन गाने का भी आवाज बहुत कम आ रहा, जरा बात जरा देखो जरा इधर उधर क्या है, सर्वर में फॉल्ट है क्या है, ट्रावर का है।
0: चलो, आपकी तो आवाज बढ़िया आ रही।
1: आ रही है पता नहीं, जब तुम्हारी आवाज मेरे को आ रही है, लेकिन जब दूसरे को बात करते हैं ना, मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है, नहीं दूसरे की आवाज मेरे को नहीं आ रही होती
0: अच्छा,
1: आ रही है। हाँ जी, आवाज बड़ा
0: तो
1: करके करे तो भी नहीं आ रही
0: और
1: ना।
0: श्रोताओं के फोन आए, आपने सुन पाया?
1: हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही ना, जैसे
0: अच्छा
1: तुम मेरे को आ रही है तुम्हारी आवाज स्पष्ट, तो मेरी भी आती होंगी, लेकिन दूसरों की आवाज अभी अभी उसकी आ रही थी तो वो आ रही नहीं गाने
0: हाँ, चलो ठीक
1: की।
0: है ठीक है, अपन गीत की ओर चलते हैं। वह
1: थैंक यू, धन्यवाद सर जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद मोहन जी।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: रेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद है आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुन ही रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी।

0: किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं। तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने, या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको, या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए, उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
0: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई हो और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
1: तो हम चल चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा हैं और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब ये सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने को मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है जो किचन से पानी निकलता है जी। और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उसे उगा सकते हैं जी। और दूसरा इसके साथ ही साथ जो है हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कि हमने एक पोसा ड्रम हेड एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है जी। तो उस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें वो खाद में को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है और लहसुन है, इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ

0: अभी जो हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
1: जी,
0: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो हम इसको बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पे टुकड़ों में जब खेत को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो यही सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती पर मतलब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध हैं यहाँ पे
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे
1: जी। हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में भी देखता हूँ, क्योंकि मतलब ये है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो मतलब ये जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने की वजह से हमें भाई देखो हमारा किसान जो है इतना अभी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसे उसने धान लगाया और 6 महीने बाद आया, धान अलग यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिसेस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती हैं वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है फ्रूटिंग हो रही है तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब ये व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के जो है लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पे, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केटों बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंट मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे हम यहाँ से दिल्ली हम मैं देखता हूँ कि चना बहुत जाता है दिल्ली हरा चना तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए चने साग बनता है
1: बिल्कुल सर,
0: तो आप ये यहाँ से चना उगा के यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है
1: जी। यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है।
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड मतलब भूमि की तैयारी करने के समय ही हम उसमें जो है खाद डालते हैं देसी खाद
1: जी।
0: और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब कि किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया
1: जी।
0: हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से वो जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फार्म्स, तो हमें वहाँ से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो जो भी इरिगेशन सिस्टम हो उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर्स जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिरा है लेकिन पहली बार 4 सालों में 5 सालों में बहुत कम पानी
1: जी जी।
0: तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
1: जी।
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली
1: जी,
0: हो
1: जी, जी।
0: जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है, जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन जो साखी जो पालक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
1: जी जी।
0: तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जिन लोग हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पे आएंगे किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो हम अब एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि एग्रीकल्चर BSc से वैकेंसी आए इतनी बहुत सारी, तो BSc एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये कि हमारे कृषि का ये भविष्य है और सब्जी उत्पादन फल उत्पादन फ्लावर उत्पादन इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो सब्जी तो उगाइए ही साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम जो मतलब जो है सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्कार,
1: धन्यवाद सर।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यवसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसी सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी

0: केमिकल भरी खातों की सब्जियां जो हम खाते हैं तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह के केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सकें आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
0: चलिए अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
1: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा।
1: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
0: 9425147126।
1: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
0: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब।
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनकी आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं, और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि

0: सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रुपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से है, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
1: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है, यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
0: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात

0: आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी वाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है, तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
0: हमारा नंबर है 9425141726।
1: तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को, सब हमारी प्यारी प्यारी सी बहनन को बरसा बहन की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंचावे। साथियों देखो, आप तो जानते ही होगे कि ई वक्त और आज के दिना खास तौर से हम आप सबके लाने लेके आउथेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ सखियो, और अम्मा के चौके में अपन और बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बनावे की विधि को सीखेंगे। देखो, खाना बनावो तो बहुत सरल बात हैगी और हमारी सब बहनें अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन खाना बनावे के संगे कौन कौन सी बातन को ध्यान रखें जज्जी अपन को, या फिर मान लो अपन को कोनो नई चीज सीखने हैगी तो कैसे सीखें, तो भैया रेडियो बुंदेलखंड एक बढ़िया माध्यम है वो अपनो, और ई में जोन हम आपको विधि बताऊ थे या जोन सखियन से बातचीत कर देंगे, सो उनकी बातें सुन के और आप अपने खाना पे जो है और स्वादिष्ट चार चांद लगा सकती होंगी, है ना? आपको देखो खाना पर भी चार चांद लगा लगे। तो सखियों देखो, आज हम आपके लाने हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके में लेके आए हैंगे सोयाबीन चिली बनावे की आसान सी विधि। अब आप सब जने सोच रहे हुज्जू के जो सोयाबीन की बरी खाई थी और सोयाबीन आलूगन में बना के खाओ, तो जो सोयाबीन चिली बनावे की विधि कैसे हुज्जे? बिल्कुल, आपके मन में जो सवाल खटक रहे है वो हम आपको उको समाधान भी बता रहे हैं, काहे कि इकी पूरी विधि और काका सामग्री में लगने हैं वह हम आपको जरूर बता रहे हैं। तो बने रहो हमारे संगे और सुनो जो कार्यक्रम। सो आओ अपन सीखत हैंगे सोयाबीन चिली कैसे बनाऊ थेंगे, इके बारे में कछु खास बात रखो।

एक ऐसी डिश हैगी साथियों जो सभी जने पसंद करत हैंगे, सबको पसंद जा आ जाऊ थेगी। काहे कि स्पाइसी खावे वाले लोग इको ज्यादा पसंद करत है, यानी कि जो तेज तर्राट खावो यानी ज्यादा मिर्ची वालों खाना खाऊ थेगे उनको भी जो ज्यादा पसंद आऊ थे। वो सोयाबीन चिली पौष्टिक चीजन से भरपूर होत हैगी। काहे कि इमें हम बहुत सी सब्जियन को भी इस्तेमाल करत हैंगे। देखो साथियों, जब अपन नॉर्मल सी सोयाबीन की बरी बनाऊ थेंगे तो अपन क्या करते हैं कि या तो गला के सिर्फ सोयाबीन अकेले बना ले उठे, या फिर एक नौ तरीका और है कि अपन और जो है चावलन में बना ले उठेंगे है, या फिर एक और जो है कि आलूअन में मिला के बना लेते हैं। लेकिन जो अपन सोयाबीन चिली बनावे वाए हैं इमें क्या करने अपन को कि बहुत सारी सब्जियन को भी मिक्स करने, सूजी में का हुई है कि पौष्टिक चीजें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पहेंगी। तो इमें आप सबको बता देवे कि रोटी चावल या फिर आप ही खो ऐसे भी खा सकते हैं, यानी कि बिना रोटी चावल के भी आप खा सकते हैं खूब मजे लेके। सोयाबीन चिली खो आप 15 से 20 मिनट में भी बना सकते हैंगे, और आप चाहो तो ये खो रसादार भी बना सकते हैंगे, मतलब ज्यादा रसा नहीं, गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम सी बना सकते हैंगे, या फिर सूखी आप बनावो चाहो तो सूखी भी खो बना सकते हैंगे। तो चलो साथी, आप बहुत देर से आप सुन रहे हैंगे कि सोयाबीन चिली बन रही सोयाबीन चिली, लेकिन कैसे बनाना जो तो अपन को सीख नहीं आया ना। तो चलो अपन देख देंगे कि सोयाबीन चिली बनत कैसी हैगी, और इको बनावे के लाने सबसे पहले जो सवाल अपने मन में आउट है वो जो ही है वो कि

0: सोयाबीन की सामग्री का हो जी, यानी सोयाबीन चीली बनावे के लाने सामान अपन और अनखो का चाने उके बारे में एक नजर एक लिस्ट अपन और बना ले उठे। ठीक है तो बहनों, लिस्ट बनावे के लाने आप का करो, एक कापी और पेन उठा लो जल्दी से। का होती के कबू कबू अपन और अब पहले आप पेन उठा लो, फिर हम बाद में बताएंगे। ठीक है का होते हम का कह रहे थे कि अपन और का करते कि चीजन को ध्यान तो रख लेते ही, लेकिन जब बना भी खिलाने बैठत ना सो चीजें आधी से ज्यादा दिमाग से बाहर निकल जाती। काय काय कि अपने दिमाग में और बिलास सारी जिम्मेदारी रहती, बहुत चीजें इताएंगी उताएंगी, सब सोचने आता अपन को, है कि नहीं। सो ई सब कोनो चीज अपन भूल ना जावे, सो पेन कापी अपन उठा के और उमे नोट कर लेवे। ठीक है तो अब उठा लिया अपने पेन कापी। चलो तो अपन शुरुआत करे थे सामग्री का अपन को चाने हैगी। तो सामग्री में सबसे पहले देखो सोयाबीन की बरी अपन को लेने हैंगी 500 ग्राम, प्याज अपन को एक ले लेने हैं, हरी मिर्च में 4 ले लेवे, और शिमला मिर्च अच्छी खासी आउट हैगी सो 1 से 2 पीस शिमला मिर्च की ले लेवे। हरी प्याज अगर मिल जावे आपको तो 1 से 2 जो है हरी प्याज आप ले सकत हैंगी। गाजर में अगर आपको मिल जावे तो गाजर भी आप एक ले सकत है। तेल की अगर बात करें तो देखो साथियों, आप जाना थोगे कि तेल जो है वो अपने अनुसार डालना चाहिए, काहे कि कछु जने ज्यादा खाऊ थे और कछु जने कम खाऊ देंगे। सो अपन को ध्यान रखने है वो कि तेल अपने हिसाब से यानी 100 ग्राम आप ले लेवे। जीरा ई में जरूर डाल लेवे 1 चम्मच, लहसुन अदरक को पेस्ट भी अपन को 2 चम्मच ई में ले लेने हैं, यानी कि लहसुन और अदरक को दो मिला के पेस्ट बना के 2 चम्मच हो जावे देखा अपन को लेने हैं। ठीक है काली मिर्च भी अपन को लेने हैगी 1 से 2 चम्मच, और मक्का को आटा आपने सबके घर में मिल जाऊ थे वो, मतलब बहुत कम मिला थे वो, अब तो पहले बहुत जल्दी मिल जाऊ तो मक्का को आटा ही में केवल अपन को 2 चम्मच आने हैं। नमक जो है वो स्वाद अनुसार चाने हैं। देखो अब काहे कि नमक की अगर बात हम आपको बता दें तो गलत हो जाएगी, आप 1 चम्मच डाल लो या 2 चम्मच, और ज्यादा हो जाए या कम रह जाए सो आप हमें उल्टी बातें सुनाओ है। सो इसे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब आगे एक और चीजन कछु चीजन के हम नाम बता रहे हैं जो आपको मिल जावे तो ठीक है, और नहीं मिलवे तो आप बिना ई के भी बना सकते हैं, जैसे कि सोया सॉस 2 चम्मच चाने हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ई के बिना भी बन जाए। मिर्ची सॉस जो तो मिल जाए आसानी से, सीखो 3 चम्मच डाल लीजियो। अब विनेगर चाने हैं अपन को सो 2 चम्मच जो चाने और नहीं मिले तो ई के बिना भी चल जाए। धनिया पत्ता तो देखो मिल जाए और ई के बिना ना चले, लेकिन ठीक है सो धनिया पत्ता ले लो। अब जा तो हो गई सामग्री के अपन को सामग्री का चाने हती, अब अपन बात कर लेवे के अपन को विधि यानी के बनाने कैसे हैं। ठीक है तो सबसे पहले काम ही में जो करने हैं, अब काहे के बिला देर हो गई बातें करत कर, सो हम मन कर रहा हूँ कहना है एक छोटो सो कछु सुन लेवे अपन, और फिर सुनने के बाद फिर अपन विधि जान लेंगे। ठीक है तो अपन एक बढ़िया सो लोकगीत को सुनत हैंगे, और लोकगीत सुनने के बाद फिर से कार्यक्रम में लौट के आ रहे कार्यक्रम अम्मा के चौकी में। बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौकी से।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
2: गुटका छोड़ो सैया रे हा हा, ए गुटका छोड़ो सैया रे हा हा, परो तो

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: अपना रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। साथी यारो देखो, अबे आप सुन रहे थे इनोने से लोकगीत को, जिखो गा रहे थे काशीराम और उनके साथी। अब अपन बात कर लेवे के अम्मा के चौके में जो विधि की अपन बात कर रहे थे कि विधि कैसी हैगी चिल्ली सोयाबीन बनावे की, सो अपन उखो देख लेते हैंगे। तो सबसे पहले अपन को का करने है वो कि पानी में थोड़ो सो नमक डाल लेवे और सोयाबीन की जो बरी अपन ने लई हैंगी उखो डाल के 2 मिनट तक उबाल लेवे, और उबलवे के बाद फिर उखो ठंडो होवे के लाने छोड़ देवे अपन। ऐसा नहीं है कि एकदम से जब उबल गई सो अपन एकाएक जल्दबाजी में जब रथेंगे सो गरम गरम उन्हें पानी में से निकाल लो, ऐसा नहीं करने। ठंडो होने देवे पहले, फिर उसके बाद उन्हें पानी में से निकालवे। तब तक अपन का कर लेवे कि अब अपन प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज और

हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़न में काट लेवे। और इनको काटवे समय आपको ध्यान रखने हैं कि जो गाजर और शिमला मिर्च प्याज जो भी आपने चीजें ली हैं इनको पहले धो लेवे अच्छी तरह से। का होती है कि जल्दबाजी में अपन इन चीजन पे ध्यान तना कम दे पाऊ थेगी। सो आप अच्छी तरह से इन्हें छील लेवे और धोने तो आपको जरूरी है। आप का करवे कि जब तक अपनी सोयाबीन जो है बा अच्छी तरह से ठंडी हो गई हो जाए तो सोयाबीन को पानी निकाल लेवे यानी को उखो निचोड़ लेवे। आगे अपन बता चलवे कि इमें अभी में साथियों अपन को का करने है गो के अंडा सोया सॉस टोमेटो सॉस काली मिर्च अदरक लहसुन को पेस्ट और मक्का को आटा जो है ये और थोड़ा सो नमक डाल के इको अच्छी तरह से मिला लेवे। एक बार फिर से सुन लेवे अंडा यानी अंडा को फोड़ लेवे सोया सॉस टमाटो सॉस काली मिर्च अदरक लहसुन को पेस्ट मक्का को आटा और थोड़ा सो नमक डाल के इको अच्छी तरीका से मिला लेवे। फिर इको तेल में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेवे और सावधानी से करने हैं बहनों आपको फ्राई। काहे कि देखो फ्राई करते में भी कई सारी ऐसी अचूक अपन से हो जाऊ थेगी जो अपन को का कहते ही घटना भी लग जाऊ थेगी। जैसे जल्दबाजी में अगर अपन फ्राई कर रखेंगे तो तेल जो है हाथन पे ओचक जाऊ थे वो जिसे अपन चल जाऊ थेगी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने है वो आपको ध्यान रखने हैं कि सावधानी से अपन को जो है इन्हें तलने है गो। फिर का करवे कि गैस पे एक करजा को चढ़ावे और उमे तेल और जीरा डाल लेवे यानी कि अब अपन बनावे की बारी आ गई। सो करैया में तनक सो तेल डाल लेवे और फिर उमे जीरा डाल देवे। जीरा डालने के बाद अपन को का करने है गो कि प्याज और गाजर को डाल देवे तनक देर तक उखो भूंजत रहे। भूंजबे के बाद जब प्याज भुन जावे तो उको कलर जो है सुनहरे कलर को हो जाए गो। फिर उमे शिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के तनक देर तक और भूंज लेवे। फिर इमे सोया सॉस टमाटो सॉस और विनेगर डाल देवे। इके बाद सोयाबीन जो अपन ने निचोड़ के रखी हती उको अलग से फ्राई कर लेवे और फ्राई करवे के बाद थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीका से मिला लेवे। सब चीजन को अच्छी तरह से मिला लेवे और ऊपर से ढक्कन लगा के इको कम से कम 2 मिनट तक आपको पकाने हैं गो। जिसे अपनी जो सोया चिली है वह अच्छी तरह से बन के तैयार हो जावे। और 2 मिनट से आप 5 मिनट भी ले सकते हैं कोनो बड़ी बात नहीं है अच्छी तरह से चीजें पक जावे। फिर इसके बाद आप जब ढक्कन खोलो इको तो अच्छी तरह से धनिया पत्ती धो के और इमें डाल देवे और गैस को बंद कर देवे। जब अपन परोसवी की बारी साथियों आतेगी तो बढ़िया सो धनिया ऊपर से अपन डाल के और सोयाबीन चिली को अच्छी तरीका से परोसे तो बड़ी स्वादिष्ट और खुशबू ईगी देखो तो बढ़िया सी आउ थेगी। अब साथियों जा तो अपन ने जानी के सोया चिली कैसी बनत है ई की विधि अपन ने जानी इखो काका जाने हैं तो बनाबी के लाने वो सब जान लो है अपन ने। आगे कछु सुझाव भी के लाने हैंगे सो आप भी ध्यान से सुन लो। सोयाबीन को गरम पानी में डाल के फुला लेवे। अगर आप सोयाबीन में अंडा मिलाऊ थेंगे तो टटोलत टाइम सोयाबीन ज्यादा तेल नहीं सूखत है गो और टेस्ट भी को अच्छो होते है गो। सोयाबीन को छानत समय तेल गरम यानी के तलत समय तेल गरम होवो चाहिए और आंच धीमी हो चाहिए। आप चाहे तो आप अपनी पसंद को भी सब्जी ईमें डाल सकते हैं यानी कि आपकी जो पसंद की सब्जी हैगी वह भी ईमें डाल सकते हैं और इको और स्वादिष्ट आप बना सकते हैं। तो साथियों जा तो हती हमारी आज की रेसिपी और हमें पूरो पूरो विश्वास है गो कि आपको जो रेसिपी जरूर जरूर जरूर पसंद आई हुई। और साथियों अगर आपको ई के बारे में कछु और पूछने हैं गो या फिर ऐसी ही आपको और भी रेसिपी हमसे पूछने हैंगी तो भी आप हमें जरूर फोन के माध्यम से बता सकते हैंगी और या फिर हमें चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी बता सकते हैंगी। जी के लाने अपना पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। जो अपनो पतो है गो जी पे अपने सब साथी भैया चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपन को संदेश लिख सकते हैंगी। सुबह जरूर हमसे जुड़वे और अपनी बात को जरूर रखवे। साथियों आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से अब हमारे जाबे को समय हो रहा है गो और चलत चलत हम आपको सुनवात हैंगे बढ़िया सी गजल को। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबे की अनुमति हमारी और आपकी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक से खाना बनाए अपन। हमेशा ध्यान रखें कि किचन में जो है बाल बच्चन को संगे ना ले जावे काहे कि किचन में ऐसी

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों हमारे किसान साथियों आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और ये विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनित रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उकता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई

0: टेढ़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे
1: जी
0: किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना
1: जी
0: चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं और उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का अध्ययन कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें, तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गी की बात करें तो कद्दू वर्गी की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उक्ता या ग्लानी रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिला

0: बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
1: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान
1: जी
0: रखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
1: जी
0: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है।
1: जी
0: तो ऐसे में क्या किया
1: जी
0: जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में आपका तरबूज हो गया खरबूज हो गया इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी कद्दू तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं
1: बिल्कुल
0: इस
1: मैम,
0: क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम टमाटर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है तो उसमें एक रोग लगता है वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी
1: हाँ
0: और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए वैरायटी को बदल बदल के लगाए क्योंकि क्या होता है जो रोगजनक होता है जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है वो तोड़ नहीं पाता है वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम, तो
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा
1: जी।
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बड़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना यानी कि खाली पड़े रहते हैं तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर
0: जी
1: देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ
0: जी
1: पर
0: जी
1: खरबूज और तरबूज की
0: जी
1: पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन
0: जी
1: आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये?
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है मिट्टी का नमूना है एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है।
1: जी
0: दूसरी चीज ये है वहां रोग कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही क्योंकि खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है या लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं,
0: जी,
1: क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था। वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह, इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है। तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे, हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है। क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लोग जो हैं वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए, तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं
0: इसका जो
1: मैम
0: है,
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम
0: एक और
1: जी मैम
0: जी विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल आपने
0: आप
1: सही
0: शिक्षित
1: बात
0: हो
1: कही है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा
0: करें।
1: विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती
0: होंगे,
1: जी
0: जी, जब आप शिक्षित होंगे तभी
1: जी
0: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल मैम,
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्ती से लगाएं, और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो उसी, इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है। मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, आप उसको भली भांति जानते हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम,
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा, तो वो कमाने के लिए जाता है। अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है। तो वो सोचता है कि भाई, हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, बिल्कुल
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा को भी लेना नहीं चाह रहा
1: जी मैम,
0: था, लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम। इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा, इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें और

0: धन्यवाद।
1: थैंक यू। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बात।

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गांव में क्या ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलाने की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे थे, बहुत ही तैयारी से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथ में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखना है आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखा थे तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लगा रहा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज यही क्रम में अपन सुनाई ई विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भय सुनते प्यारी सी नौटंकी को जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: कान के घाती बने हैं।
1: हाँ लाला, जितना ही भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है बाप।
0: यानी हमारे भाई साहब ने।
1: हाँ
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है

0: अभी?
1: आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं। नहीं तो ऐसा नहीं है। मेरे संग में मरेंगे तू भाभी अभी तो जगत में जचेगी ये सांसें सही। सारी दुनिया कहे फंसी देवर के संग

0: सुनिए, मैं जा रहा हूँ और बाजार से एक शीशी ला कर देता हूँ और सारे भोजन में जहर मिला दो और हजलों को खिला देना।
1: नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा

ज्ञान के घाट।

0: अभी?
1: आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं। नहीं तो ऐसा नहीं है। मेरे संग में मरेंगे तू भाभी अभी तो जगत में जचेगी ये सांसें सही। सारी दुनिया कहे

0: हाँ देखो दोस्तों, जापान सब जनन ने सुनी है नौटंकी। इन नौटंकी को आनंद लव है दोस्तों। इन नौटंकी को गा रहे थे बनमाली बर्मा जी और उनके संगी साथी। आप साथियों, एक क्रम में हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ये कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त मातादीन भैया जी को जाबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त मातादीन भैया को दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार। विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों, आप सब जन को जे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतना ही संपन्न होते है। सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप उन्हें ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन होवे को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।